नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजुफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबित्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने यह बात कही। विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The 2-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest, the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussion between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. The Prime Minister is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jayashankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
3: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions.

0: 당근.
1: नमस्कार स्वागत प्रणाम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम है घर आंगन आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक स्वीकार करें मेरा नमस्कार आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव जिनके संस्कार और जिनका स्नेह हमारे परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की आज घर आंगन में महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों के अनुभव स्वास्थ्य जागरूकता अकेलापन परिवार में उनकी भूमिका

पुराने हुनर, पाक कला और आत्मनिर्भरता जैसे विषय, इन पर चर्चा होगी और आप सुनेंगे खूबसूरत नगमे, क्योंकि हमें आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े भी तो रहना है। सबसे पहले सुंदर विचार। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि में नई कोपले फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज और नई स्फूर्ति प्रतिभा के ही लक्षण है। तो लीजिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

आप सुन रहे थे लिबास फिल्म से, आवाज थी लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम घर आंगन। आज का घर आंगन उन सभी महिलाओं और पुरुषों के नाम,

अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिवार को संवारने में लगा दिया। बच्चों की पढ़ाई, उनकी नौकरी, बच्चों की शादियां, घर परिवार की जिम्मेदारियां। और अब जब जिंदगी थोड़ी ठहरी है तो सवाल ये है कि क्या इस उम्र में जिंदगी के सपने ठहर जाने चाहिए? हम कहते हैं बिल्कुल नहीं। 60, 70 या 80 की उम्र जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने का एक नया पड़ाव है। सपने देखने का, और सपने ही तो अपने हैं, क्यों ना उन सपनों को फिर से ढूंढकर निकालकर फिर से जिया जाए। हर उम्र में कुछ ना कुछ नया करते रहना ही तो जिंदगी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है। और अब जब समय है तो कीजिए नए नए एक्सपेरिमेंट जिनकी कभी इच्छा रही थी। ढूंढ लीजिए अपना वो हुनर जिसके लिए समय नहीं था, और अब समय है अपने हुनर को नई पहचान देने का।

फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था। और हमारे जो वरिष्ठ हैं, क्या आप जानते हैं, वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। जी हाँ, उनके पास अनुभव है, कहानियां हैं, रिश्तों को निभाने की समझ।

आज है और वो धैर्य है जो आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आज के बच्चों को, युवाओं को अपने वरिष्ठ यानी बड़ों से सीखना चाहिए और वरिष्ठ लोगों को भी अपने अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाने चाहिए, अपनी कहानी सुनानी चाहिए, बड़े लोगों को अपनी रेसिपी लिखनी चाहिए ताकि उनकी जो रेसिपी है उनकी जो धरोहर है आगे जा पाए, अपने जीवन के अनुभव साझा करने चाहिए क्योंकि अनुभव तभी विरासत बनते हैं जब उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। उनके अनुभव ही तो अमूल्य मार्गदर्शक होते हैं और उनके अनुभवों से सीखकर हम लोग और युवा उन गलतियों से बच जाते हैं जो उन्होंने की थी। संकट के समय हमें वरिष्ठ नागरिकों के जो हमारे बड़ों के अनुभव हैं हमें मानसिक ताकत देते हैं।

कपूर और आशु भोसले की आवाज में ये गीत दिल और मोहब्बत फिल्म था। यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम घर आंगन और आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की अपने बुजुर्गों की उम्र के साथ फैशन क्यों बदले। जी हाँ, बढ़ती उम्र का मतलब ये तो नहीं कि रंगों से दोस्ती ही खत्म हो जाए। साड़ी हो, कुर्ता हो, शॉल हो या कोई भी सुंदर आभूषण अपने मन का पहनना चाहिए और खुशी से पहनना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र हो। आजकल वरिष्ठ महिलाओं के लिए आरामदायक और आकर्षण कपड़ों के ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। हल्के कपड़े, सुविधाजनक जूते, आसान डिजाइन और अपनी पसंद के रंग। फैशन का मतलब सिर्फ दूसरों को अच्छा दिखाना नहीं है।

फैशन का मतलब है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना। इसलिए उम्र कोई भी हो, फैशन से दोस्ती तो होनी ही चाहिए। और बुजुर्गों के लिए फैशन आज के समय में आराम और शालीनता का एक खूबसूरत मेल बन चुका है। बढ़ती उम्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टाइल से समझौता किया जाए। आजकल वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ अच्छे और आरामदायक कपड़े चुन रहे हैं, बल्कि अपने लुक में आधुनिकता का टच भी दे रहे हैं। इसलिए कीजिए रंगों से दोस्ती और अपनाइए फैशन हर उम्र में।

पुजारी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। अब हमने बात करी है बुजुर्गों की, वरिष्ठों की, तो हमारे घरों में कितनी रेसिपी ऐसी हैं जिनका स्वाद हमें आज भी याद आता है। दादी के हाथ के लड्डू, नानी के हाथ का अचार, माँ के हाथ की मठरी, घर की बनी नमकीन, इनका स्वाद बाजार में कहाँ मिलता है। आज भी बुजुर्ग महिलाएं अपने पुराने व्यंजनों को लिख रही हैं। जी हाँ, लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी पुरानी रेसिपी आपको याद है, आपकी दादी नानी ने आपको सिखाई, और आपकी दादी नानी अगर हैं और आपकी माताजी अगर उन रेसिपी को लिख लें तो परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। चाहे तो छोटी छोटी सी होम कुकिंग या रेसिपी गतिविधि भी शुरू की जा सकती है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया पर भी डाली जा सकती हैं अपनी मम्मी और अपनी दादी नानी के हाथ की जो छोटी छोटी रेसिपी हैं। बहुत सारी काम की चीजें हैं उनके पास, लेकिन उम्र के साथ खान पान में संतुलन भी जरूरी है। स्वाद के साथ साथ साफ सफाई, उचित मात्रा और अपने व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार भोजन का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन जो रेसिपी की बात मैंने बताई ना, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे याद है जैसे कि मेरी मम्मी हमें लौकी की बर्फी बनाकर खिलाती थी, जो उन्हें हमारी दादी ने सिखाई थी। एक कप लौकी को कद्दूकस करके आधा कप चीनी डालकर कड़ाही में पकने रख दी। फिर जब पानी सूख जाए तो लौकी भी गल जाएगी, तो उसमें मावा डालकर ट्रे में जमा दें। और ये व्रत में भी खाई जा सकती है और वैसे भी खाई जा सकती है। तो ये रेसिपी तो हुई मेरी, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी, जो उन्होंने मेरी दादी से सीखी थी। आप भी अगर ऐसी ही कोई रेसिपी हमें बताना चाहें तो बता सकते हैं हमारा, और आप ये भी बता सकते हैं हमारे कार्यक्रम में कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमने आपको बताया ही था हमारा ईमेल आईडी fmgolgia@gmail.com। इस पर आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं।

मंगेशकर की आवाज में ये गीत फिल्म तुम्हारे लिए से था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन FM 100.1 MHz पर, और आज हूँ इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक, और बात चल रही है हमारे वरिष्ठ नागरिकों की। नौकरी से रिटायरमेंट हो सकती है लेकिन हुनर से नहीं। किसी को सिलाई आती है, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, और संगीत सिखाना आता है, गाना गाना आता है। क्यों ना अपने हुनर को बच्चों या आसपास के लोगों को सिखाया जाए। ये जरूरी नहीं कि हर काम पैसा कमाने के लिए ही किया जाए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए भी किया जा सकता है, और समय भी कट जाता है और अपने दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। कई बार अपने हुनर को किसी और तक पहुंचाना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। यदि कोई बुजुर्ग सुरक्षित और अपनी क्षमता के अनुसार छोटा काम करना चाहे तो वह आत्मविश्वास और सक्रियता का अच्छा माध्यम भी हो सकता है।

में हुए पराए। इस फिल्म में अभी आप सुने थे लता मंगेशकर और साथियों को। अब दोस्तों बात करेंगे अकेलेपन की। बुजुर्ग साथियों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अकेलापन नहीं अपनापन चाहिए। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत केवल दवा या आराम या खान पान की नहीं होती, जरूरत होती है किसी के साथ बैठकर बात करने की। बच्चों के पास समय नहीं है, पोते पोतियां अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे वरिष्ठ लोगों को रोज थोड़ा सा समय देना बहुत बड़ी बात है। एक फोन, एक कप चाय, साथ बैठकर पुरानी बातों पर बातचीत, पुरानी यादों पर बातचीत, ये छोटी छोटी चीजें उनके दिन को खूबसूरत बना सकती हैं। और हमारे बुजुर्ग श्रोताओं से भी यही कहना है, अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कीजिए, सामाजिक गतिविधियों से जुड़िए, अपने शौक को समय दीजिए, अकेले मत रहिए, लोगों से जुड़े रहिए।

कुमार और आशा भोसले के स्वर में ये गीत आपने सुना कालिया फिल्म से। अब देखिए बात हो रही है वरिष्ठ नागरिकों की, तो वरिष्ठ महिलाओं कार्यक्रम तो महिलाओं का ही है, तो हम कैसे महिलाओं की बात ना करें। अब महिलाओं की बात जब हम करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारी वरिष्ठ महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित रही हैं। आज अगर वे अपने लिए कुछ करना चाहें तो परिवार को उनका साथ देना चाहिए। सिलाई, कुकिंग, बागवानी, हस्तकला, लेखन, संगीत, जिस काम में मन लगे वही कीजिए। यदि कोई महिला डिजिटल माध्यम से अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचाना चाहती है तो परिवार के युवा

आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फागुन फिल्म से। स्वास्थ्य के साथ साथ खुशियों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, उम्र बढ़ने पर शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच, उचित भोजन, अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, ये बहुत जरूरी है। और साथ में संगीत सुनना, किताब पढ़ना, दोस्तों से मिलना और हंसना हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी केवल वर्षों की गिनती नहीं है। जिंदगी उन पलों का नाम है जिन्हें हम खुशी से जीते हैं और किसी के साथ जीते हैं।

देखो उधर तुम हो नजारा हो तो ऐसा हो। लव इन टोक्यो फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है जिंदगी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। देखिए रिटायरमेंट नौकरी की हो सकती है हुनर की नहीं। बच्चे बड़े हो सकते हैं लेकिन माता पिता की जरूरत कभी खत्म नहीं होती और सबसे जरूरी अपने लिए जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं। जड़ें मजबूत रहेंगी तभी नई पीढ़ी का पेड़ मजबूत होगा। इसलिए आज अपने घर के किसी बुजुर्ग के साथ बैठिए, अपने मोहल्ले के बुजुर्गों के साथ भी बैठना चाहिए, उनकी बात सुनिए, उनसे कोई पुरानी कहानी पूछिए। अगर आप स्वयं बुजुर्ग हैं तो अपने मन से कहिए, मेरी जिंदगी अभी बाकी है, मेरे सपने अभी बाकी हैं और मेरी मुस्कान अभी बाकी है। और इसी मुस्कान के साथ आज के घर आंगन से राधा पाठक को दीजिए विदा। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई पुरानी यादों और सदाबहार गीत के साथ। और आप सुनिए ये गीत।

Ngân. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसुका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोखवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: and transparent trade and investment.
0: इस अवसर पर

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
1: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jaishankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
3: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, in his address, called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
4: BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured exports. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
2: Prime Minister Narendra

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
2: दोस्तों दामिनी का निर्देशन किया था राजकुमार संतोषी ने, पटकथा राजकुमार संतोषी ने लिखी थी और संवाद थे दिलीप शुक्ला के। फिल्म का निर्माण करीम मोरानी ने और अली मोरानी और बंटी सूरमा ने किया था। दामिनी का किरदार निभाया था मीनाक्षी शेषाद्री ने, उनके पति शेखर गुप्ता की भूमिका में थे ऋषि कपूर और फिल्म में एक ऐसा किरदार है जिसकी एंट्री के बाद पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये किरदार था वकील गोविंद श्रीवास्तव का जिसे निभाया था सनी देओल ने। वहीं अमरीश पुरी ने बैरिस्टर इंद्रजीत चड्डा की भूमिका निभाई थी। फिल्म में कुलभूषण खरबंदा, रोहिणी हटगड़े, परेश रावल और कई दूसरे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। फिल्म के संगीत की बात करें तो संगीत दिया था मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने और गीत लिखे थे समीर ने। अलका याग्निक, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म के गीतों को खूब पसंद किया गया।

कहानी शुरू होती है दामिनी से। दामिनी एक सीधी सादी और खुश मिजाज लड़की है। उसकी शादी होती है शेखर गुप्ता से। शेखर एक संपन्न परिवार से है और शादी के बाद दामिनी भी अपने नए परिवार में खुश रहने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अब यही उसका घर है और यही उसके अपने लोग हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। दामिनी की जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आता है। एक दिन उसके सामने

घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ हुआ एक गंभीर अपराध आता है और दामिनी उस घटना की गवाह बन जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच बोले या फिर परिवार की इज्जत के लिए चुप रह जाए। दामिनी के लिए ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप है वे उसके अपने परिवार से जुड़े हैं और यहीं से शुरू होती है दामिनी की असली परीक्षा। दामिनी सच बोलना चाहती है, लेकिन परिवार चाहता है कि वो चुप रहे। उसे समझाया जाता है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो परिवार की बदनामी होगी, लेकिन दामिनी के मन में एक बात बार बार आती है, गलत तो गलत है, चाहे उसे करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। दामिनी अपनी बात पर कायम रहती है, लेकिन सच का साथ देना उसके लिए आसान नहीं रहता। उसे दबाव का सामना करना पड़ता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। धीरे धीरे वो अपने ही घर में अकेली पड़ने लगती है। जिस परिवार को उसने अपना समझा, उसी परिवार के लोग अब उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। और यहीं फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है, क्या परिवार की इज्जत सच से बड़ी हो सकती है? दामिनी का जवाब है, नहीं।

दोस्तों, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी और मुश्किल होती जाती है। दामिनी की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान किया जाता है। उसकी बात को कमजोर साबित करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई उसे हारने नहीं देती। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। दामिनी की जिंदगी में आता है वकील गोविंद श्रीवास्तव। सनी देओल ने इस किरदार को निभाया था। गोविंद खुद भी परेशानियों से घिरा हुआ इंसान है, लेकिन जब उसे दामिनी के सामने की सच्चाई पता चलती है तो वो उसके साथ खड़े होने का फैसला करता है। अब दामिनी अकेली नहीं है, उसके साथ एक ऐसा इंसान है जो सच को सच कहने से डरता नहीं है। और अब कहानी पहुंचती है अदालत तक। एक तरफ दामिनी की सच्चाई है, दूसरी तरफ पैसा है, ताकत है और प्रभाव है। अदालत में सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, गवाह सामने आते हैं और हर कदम पर दामिनी को चुनौती का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर है बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा। ये भूमिका निभाई थी अमरीश पुरी ने। अब आमने सामने हैं दो मजबूत किरदार, गोविंद श्रीवास्तव और इंद्रजीत चड्ढा। अदालत के इन दृश्यों में सनी देओल और अमरीश पुरी की टक्कर फिल्म का बेहद यादगार हिस्सा बन जाती है। और इसी फिल्म का एक संवाद बाद में लोगों की जुबान पर चढ़ गया, तारीख पे तारीख। आज भी जब अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने की बात होती है तो इस संवाद को याद किया जाता है। और इन सबके बीच दामिनी की जिंदगी लगातार एक मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दामिनी केस जीतेगी या हारेगी, सवाल ये है कि क्या सच की आवाज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पैसे और प्रभाव के सामने भी टिक सके। और आखिरकार कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां सच सामने आने लगता है। दामिनी ने जिस बात के लिए लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठाई, उसने ये साबित किया कि अगर हम किसी गलत चीज को अपनी आंखों के सामने होते देखें तो सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि सामने वाला ताकतवर है। दामिनी की कहानी हमें यही बताती है कि सच की राह मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा मजबूत होना तो मुश्किल रास्ते पर भी मंजिल मिल सकती है।

दोस्तों अब बात करते हैं दामिनी फिल्म को मिले पुरस्कारों की। दामिनी को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई महत्वपूर्ण सम्मान मिले। राजकुमार संतोषी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला, सनी देओल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, सुतानु गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए सम्मान मिला और राकेश रंजन को सर्वश्रेष्ठ साउंड के लिए पुरस्कार मिला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकन मिला। मीनाक्षी शेषाद्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अमरीश पुरी को नकारात्मक भूमिका के लिए नामांकन मिला। और सबसे खास बात, सनी देओल को गोविंद श्रीवास्तव की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान भी मिला। यानी दामिनी ने सिर्फ दर्शकों का दिल नहीं जीता बल्कि अपने अभिनय, कहानी और निर्देशन के लिए कई बड़े सम्मान भी हासिल किए। दोस्तों अब जान लेते हैं कि मेल के जरिए हमारे साथ कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं। ये हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षिता। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवाश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जागुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। अगला मैसेज आया है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, ये लिख रहे हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, अदीब और नाजिया, आफिया और इब्राहिम सद्दाम। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और सोपान तायड़े।

कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया,

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एक फिल्म से कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। हमारी आज की फिल्म थी दामिनी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद नवी दिल्ली विच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी के सारे रूपों खिलाफ भारत का संकल्प अडोल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आत्म निर्भरता से संकटों तो उभरन की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। केंद्रीय समाजिक न्याय ते शक्तिकरण राज मंत्री रामदास आठवले अज पंजाब दे इक दिन दौरे ते ने। ओ जलंधर दे डेरा सचखंड बल्लां च नतमस्तक होए ते जूनियर एशिया कप हॉकी च मर्दां दे सेमीफाइनल च अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दोपहर बाद नवी दिल्ली च रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल दुवल्ली गलबात करनगे। दोवां नेतावां वल्लों आपसी हितां दे मुद्दिआं ते चर्चा कीते जाण दी उम्मीद है। मीटिंग दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पछमी एशिया संकट, व्यापारक संबंध ते ऊर्जा सहयोग वर्गे मुद्दिआं ते चर्चा होण दी संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन अज सवेरे ब्रिक्स सम्मेलन विच शामल होण लई भारत पहुंचे। श्री मोदी अज शाम ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के नाल वी गलबात करनगे। ईरान दे राष्ट्रपति अज दोपहर बाद नवी दिल्ली पहुंच रहे ने। पछमी एशिया की मौजूदा स्थिति नूं देखदिआं इह मुलाकात महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के सकत्र जनरल एंटोनियो गुतरेस नाल भी गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन लिए विश्व नेता नवी दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास प्रगट किया कि सम्मेलन में वख-वख मुद्दों पर सकारात्मक अर्थपूर्ण चर्चा होगी, इसका उद्देश्य विश्व भलाई होगा। नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे होने वाले दो रोजा सम्मेलन च ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, साउदी अरब, दक्षण अफ्रीका ते संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 प्रमुख उभरियां ते विकासशील अर्थव्यवस्था एक मंच ते होणगियां। सम्मेलन विच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फाता अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियन, आबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन समेत कई प्रमुख विश्व नेता शामिल होंगे। ब्राजील की नुमाइंदगी विदेश मंत्री मोरोवियरा करनगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री क्राउन प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आत्म निर्भरता से संकटों तो उभरन की योग्यता अज हर देश की आर्थिक रणनीति लिए महत्वपूर्ण बन गई है। इस तो अलावा मजबूत सहयोग और भाईवाली राही निरंतर विकास को उत्साहित करना भी जरूरी है। डॉ जयशंकर अज सवेरे नवी दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार फोरम को संबोधन करते हुए यह गल कही।
1: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
0: है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह समूह मैंबर देशों नूं अपने तजर्बियां ते नीतियां दी तुलना करन, ठोस विधियां नूं मजबूत करन अते नवें मौकियां दी घोख करन लई एक मंच प्रदान करदा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि यह साल ब्रिक्स लई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है क्योंकि समूह 20 सालां दे संस्थागत सहयोग नूं पूरा कर रहा है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुजाकरात की उम्मीद जाहिर की है। जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती, पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। भारत ने अमरीका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज़्म को दोहराया है। चीन के शहर मोकी में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज दोपहर भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। और अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरिना सेबालेंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकिना खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल से शुरू होने वाली 18वीं ब्रिक्स सबरा मीटिंग में शिरकत के लिए दुनिया भर के रहनुमा नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि सबरा मीटिंग में दुनिया की खुशहाली के रहनुमा उसूल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बामाना और तामीरी बातचीत की जाएगी। भारत मंडपम में होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब इमारात शामिल हैं। भारत की सदारत में होने वाली सरबराह मीटिंग का मौजू है मजबूत इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की का क्याम। इस सरबराह मीटिंग में मुख्तलिफ आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। इनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, जनूबी अफ्रीका के सदर सीरिल रामाफोसा, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के सदर पराबुओ सुबियांतो, ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान, अबू जहबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली शामिल हैं। ब्राजील की नुमाइंदगी वहां के वजीर खारजा माउरो वीए ईरा करेंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद भी इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। सरबराह मीटिंग कल जामे आलमी हुक्मरानी और कसीर रुखी निजाम को मजबूत बनाने के मौजू पर ब्रिक्स रुकन मुल्कों के बंद कमरे के इजलास के साथ शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के रहनुमा भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स नुमाइश भी देखेंगे। इसके बाद वो मुश्तरक तौर पर शजरकारी करेंगे। शजरकारी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से शानदार एशाया का अहतमाम किया जाएगा। वजीर आजम मोदी सरबराह मीटिंग के मौके पर ब्रिक्स मुल्कों के रहनुमाओं के साथ कई दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। इतवार के रोज वजीर आजम मोदी ब्रिक्स के शराकतदार मुल्कों के रहनुमाओं और मदऊ मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। ये रहनुमा मजबूत इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की का क्याम, जामे आलमी तरक्की के लिए मुस्तकबिल की तामीर के मौजू पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल मुतवक्के है। दोनों रहनुमा रूस यूक्रेन तनाजे, मगरबी एशिया के हालात, तजारती ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन जैसे मामलों पर बातचीत करेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए आज सुबह सवेरे कौमी राजधानी पहुंचे। वजीर आजम मोदी आज शाम ईरान के सदर मसूद पेजश्कियान के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर पेजश्कियान आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात को खास अहमियत हासिल है। तवक्को है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई हालात और वाकयात गुफ्तगू के अहम मौजूदात में शामिल होंगे। वजीर आजम मोदी कौमी राजधानी में अपनी मसरूफियात के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो

0: BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आयना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस

0: ध्रुव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
2: For BRICS particularly, higher economic activity.
3: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
2: and transparent trade and investment.
0: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त

0: मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
1: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाखस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान

के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, 684 किलोहर्ट्ज, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोता,

0: जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर फाइन सर।
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
6: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
2: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Yes, sir.
6: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
2: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
2: I see a big white bear.
1: Looking down at me. As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a ship sailing.
2: I see a ship sailing.
1: On a wide sea.
2: On a wide sea.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky. I see an elephant.
2: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me.
2: Waving its trunk at me.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: Oh, it's fun. It's fun to me.
2: Oh, it's fun. It's fun to me.
1: To see what

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlindo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स.
7: मेरा नाम साक्षी है. मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ. एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी. उसने अचानक से ब्रेक मारा. और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा. मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी. एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता.
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके.
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला. इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है.

0: अहोभागी कहूंगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
1: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
0: अरे देखो देखो उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
1: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
0: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
1: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
0: हाँ,
1: और देखो देखो उसने कैमरा भी टांग रखा है।
0: अरे हाँ,
1: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
0: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
1: मालूम नहीं,
0: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलो, नजदीक आ गए,
1: आगे आगे
0: आ जाओ, आ जाओ। चलो,
2: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
3: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
2: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
4: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूँ।
3: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
2: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
5: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा
3: रही है। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
2: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
6: होमी। ओ होमी।
7: जी माँ, आती हूँ।
6: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
7: क्या बात है माँ?
6: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है, मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
7: जी माँ, बिल्कुल।
6: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
7: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, बस यही विचार मन में बार बार आता है।
6: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
7: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और

0: चिंता मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
1: अरे
0: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
1: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
0: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
1: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
0: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
1: कुछ नहीं होमी, बस करो।
0: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
0: सर मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, अब बैठो, यहाँ बैठो।
0: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
0: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
0: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
0: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
0: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
4: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर दी बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
4: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था।

0: दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
1: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हो।
2: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
0: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी, बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
1: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
2: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
0: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रही। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
2: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। जी राखी, सबसे पहले हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म राजकुमार का ये

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

सोने अय्यर और डीडी फ्रिडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त आपका होस्ट नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सभी की नजर है।

इमरान अजीज मिलन और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म की कव्वाली। कलाम था कौसर मुनीर का, मौसीकी प्रीतम की थी। और ये सुनिए जावेद अली, अल्तमश फरीदी और साथियों की आवाजों में इश्क के परिंदे फिल्म की ये कव्वाली। कलाम तनवीर गाजी का, मौसीकी राशिद खान की।

दिल्ली शे फिल्म के इस कव्वाली के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए सुनिए, मारूफ मिजाही अदाकार जॉनी वॉकर के साथ की गई एक बातचीत। आपसे मैं हुए गुफ्तगू हैं मरियम काजमी।

0: का जो है इसको काम पे कहीं लगा दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये BST का जो है ना ये मैनेजर ये मेरा दोस्त है, तो इसको बस में कंडक्टर ही लगा सकता हूँ अगर इसको काम करना हो तो। तो फादर ने मुझसे पूछा कि भाई बेटा कंडक्टर ही करोगे? तो मैंने सोचा उस पर ध्यान दिया तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कंडक्टर भी क्या होगा पूरे बम्बई का पता लग जाएगा, सारे स्टूडियो का पता लग जाएगा, सारे एक्टरों का पता लग जाएगा और सब फ्री में घूमता रहूंगा, सब देखता रहूंगा, सब मालूम हो जाएगा, तो ये नौकरी किसी तरह कर ही लो। तो इसलिए मैंने वो नौकरी कर ली और उसका नतीजा वही निकला जो होना था।
1: कितने साल आपने नौकरी की?
0: नौकरी 2 साल की मैंने, 1942 से 44 तक।
1: अच्छा।
0: 26 रुपए पगार थी महीने की।
1: अच्छा। तो फिर उसके बाद आप फिल्म लाइन में किस तरह से पहुंचे?
0: धीरे धीरे पहचान होगी लोगों से, तो बहुत लंबी कहानी है ना ये भी, इसमें भी बड़ा टाइम लगता है ना।
1: तो आपकी पहली फिल्म?
0: पहली फिल्म को कोई नहीं, किसी ने देखी ही नहीं। वो ऐसा था एक्स्ट्रा में काम करते थे ना शुरू में, तो काम कोई ऐसा बड़ा रोल मिलने का कोई चांस था ही नहीं, तो जो मिलता था वो कर लेते थे, तो उसके लिए वो एक गुजारा और एक रास्ता और जाने आने का चांस, लोगों से मिलने का चांस वो मिलता रहा। उसमें काफी टाइम लग गया। फिर गुरुदास जी से मुलाकात हो गई, गुरुदास जी की पिक्चर थी बाजी, पहली पिक्चर थी उनकी, वो बना रहे थे, तो उसमें बल्लाज सैनी साहब ने मेरे को उनसे मिला दिया। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा भाई मेरी पिक्चर तो कंप्लीट भरे, इसमें एक ही सीन है, ये कर लो तो बहुत अच्छा है। मैंने बोला कर लो भाई। तो अलग करना ऐसा हुआ कि वही एक सीन ऐसा था जिससे मालूम पड़ गया कि मैं भी काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, गुरुदत्त को भी बहुत पसंद आया वो काम, तो गुरुदत्त से ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे घर की तरह हो गए, तो उनकी तमाम पिक्चरों में मैंने काम किया।

0: जॉनी भाई, आपने गुरुदत्त साहब, देवानंद और दिलीप साहब, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे उस जमाने के, उनके साथ काम किया और हरेक से आपके बेहद अच्छे तालुकात भी
1: हैं। अच्छे।
0: और एक जमाना था जब कोई फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें अगर जॉनी वॉकर ना हो तो फिल्म,
1: अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। तो ये ना कि मैं बता रहा हूँ, और अल्लाह का करम जब से शुरू हुआ है ना, तब से आज तक इतना है कि इतनी ही उम्र मुझे और आगे मिल जाए ना तो भी शुक्रिया पूरा नहीं कर सकता मैं, इतना इतना नवाजा उसने। मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, अल्लाह का करम ये है कि 3 लड़कियां और 3 लड़के, उसमें भी अल्लाह ने बहुत हिसाब किताब बराबर रखा। फिर उसमें दूसरी बात ये थी कि पहले 3 लड़कियां, बाद में 3 लड़के।
0: अच्छा,
1: यानी हर तरह से उसने ऐसा नवाजा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और आज अल्लाह के फजल से मुझे काम से रिटायर होके बंद करके 20 साल के करीब हो गए। बच्चे जो है 6 बताए ना आपको, 6ों की शादी हो गई है
0: माशाल्लाह।
1: तो अल्लाह का करम है, मेरे सामने मैंने बच्चों की शादियां देख ली, फिर बच्चों के बच्चे देख लिए
0: माशाल्लाह,
1: और बच्चों के बच्चों की शादियां देख रहा हूँ अब
0: माशाल्लाह।
1: तो इससे बड़ा और अल्लाह मेहरबान किससे हो सकता है। और आज 20 साल से जब से काम बंद किया है, जब से फुल टाइम फ्री हूँ, नो टेंशन, सब बच्चे कमा रहे हैं, सबकी शादियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दिन भर हम और मैं वाइफ दोनों यहाँ रहते हैं। जब मूड आता है कि चलो तो चलो, बच्चों को मिलने चले जाते हैं, बच्चे लोग मिलने के लिए बराबर आते रहते हैं। एक बच्चा यहाँ पर खाली नासिर बस, तो उसने भी बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ अमेरिका में
0: जी। वो तो सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स में भी आते हैं, फिल्म में भी एक उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया।
1: बस अल्लाह करम, मैंने बताया ना आपको,
0: ये आपकी नियत है जॉनी भाई, जब आपको अल्लाह पे भरोसा था इसीलिए अल्लाह ने सब

0: आपके काम बनाए।
1: माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त, ऐसा वैसा भी नहीं, मेरे जैसा आदमी आपको मिलना इस जमाने में मेरे ख्याल से लाइफ में सेटिस्फेक्शन क्या होता है ये मुझे मालूम है खाली।
2: आमतौर से देखा ये गया कि इस फिल्मी दुनिया में जो कुछ सामने नजर आता है पसे पर्दा कुछ और होता है, लेकिन आपकी जिंदगी बिल्कुल शीशे की तरह आया है, जो सामने है वही उससे ज्यादा अच्छी रही।
1: कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने मुझे मेरी ख्वाहिश से हर चीज बहुत ज्यादा और बेहिसाब दे दी। न पढ़ा ना लिखा, न कोई खास तालीम में नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर अल्लाह ने इतना नवाजा कि मैं आपसे क्या बोलूं।
0: ये बताइए जॉनी भाई, आप तो अल्लाह का करम है कि आप इतने मुतमईन हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, वो अब भी आपको देखने के मुतमन्नी हैं, तो कभी आपका जी नहीं चाहा वापस जाने के?
1: नहीं, मेरे को कसम नहीं खाई है। अभी क्या है कि हर टाइम आदमी का

0: है कि आदमी को चेन चाहिए, आप समझे ना, तो चेन के हिसाब से जब ये चेन बदला तो पहले तो डबल मीनिंग शुरू हुआ, उसके बाद वल्गरिटी हो गई, तो मैंने कहा अब अपना काम नहीं है, तो मेरी तो क्लीन कॉमेडी होती थी, 300 सुपर पिक्चर में काम किया, अभी सेंसर मेरा कभी एक वर्ड नहीं कटा, ये अल्लाह का मेरे पे करम रहा, और मैं इम्प्रोवाइज कर देता था इनको डायलॉग में, उससे ही मैं स्कोर करता था, उसी में वही मेरा विनिंग पॉइंट था, तो उसमें अल्लाह ने बहुत नवाजा था मेरे को, तो उससे मैं इतना लंबा चलता रहा। फिर मैंने एक वक्त आया जब मैं बहुत काम कर रहा था 18-20 घंटे, तो बच्चे पहचानते नहीं थे, 66 की बात बता रहा हूँ आपको मैं, बच्चे पहचानते नहीं थे मेरे को, तो मैंने कहा भाई लाने थे ऐसे पैसे पे, ये इतना करने का कोई सेंस नहीं, आदमी क्या होता है जब काम शुरू करता है तो ये सोचता है कि भाई मैं अगर कमाने लग जाऊंगा अल्लाह मुझे कामयाबी दे देगा तो सब बच्चे बीवी सब बहुत ऐश करेंगे, और जब कमाने लग जाता है अल्लाह सुन लेता है उसकी, तो सबसे पहले बीवी बच्चे और घर को भूलता है आदमी, सबसे पहले जिस नियत से उसने काम शुरू किया था, न बीवी के पास उसके पास टाइम है, न बच्चों के लिए उसके पास टाइम है, न घर के लिए टाइम है, लगा हुआ पैसों के पीछे, फाड़ों से खींच रहा है, जितना आ जाए उसको कम है, कहीं सेटिस्फेक्शन ही नहीं है उसको, तो वो सिचुएशन आ गया। मैं तो फिर एक दिन बैठ के मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैंने कहा अल्लाह ताला सोचेगा कि ये आदमी भी उसी लाइन पे लग गया, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर आने के लिए एक हद तक अपने को करना ही पड़ता है, मेहनत एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मैंने सोचा बहुत हो गया एस्टेब्लिश, अब क्या करने का है, इतना नवाज दिया अल्लाह ने और क्या चाहिए, कोई पिक्चर मेरे बगैर बनती नहीं थी, जिसको मैं छोड़ता था वही बनती थी। तो मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा देखो भाई अल्लाह ये सोचेगा कि इसको तो शुक्रिया का मौका भी नहीं मिलता मेरे को, इसको इतना नवाज दिया और ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भूल ही गया है। उस दिन मुझे झटका लगा, 66 की बात बता रहा हूँ, जब बेस्ट टाइम था, दूसरा आदमी हिम्मत नहीं कर सकता कोई भी, ये मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अल्लाह ने मुझे हर तरह से नवाजा। तो 66 में जब ये नौबत आई तो मैंने सोचा कि चलो आज से ऐसा करो कि अल्लाह की इंसान के लिए सबसे बड़ी दो नेमतें हैं मेरे हिसाब से, दो नेमतें ये हैं, एक तो नींद और खुराक, जिसको अल्लाह ताला टाइम से नसीब कर दे उससे बड़ा बल्कि नसीबदार दुनिया में किसी को समझता ही नहीं,
1: उससे ज्यादा अमीर आदमी कोई है
0: ही, कोई है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, नींद और खुराक। तो मैंने कहा ये, और इसके लिए क्या होगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तब जाके ये हो सकता है। उस दिन मैंने सोचा फिर बैठ के आज से कि अल्लाह का शुक्रिया का मौका भी मिलेगा, बी बच्चों के साथ खुशी से रहूंगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। उस दिन डिसाइड किया मैंने कि आज से 6 बजे के बाद 1,00,000 रुपए घंटा देवे तो काम नहीं करने का, इतवार के दिन 10,00,000 रुपए देवे तो काम नहीं करने का, और आप यकीन कीजिए जब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए।
1: ये जो कॉमेडी रोल्स करने लगे, हर एक इंसान का एक फोर्टे होता है, एक वो होता है, तो आपको ये कैसे पता चला कि आप कॉमेडी करना?
0: नहीं, मुझे शुरू से कॉमेडी करने ही का शौक था, और मैंने आज तक कॉमेडी के अलावा कुछ किया नहीं। मैंने कहा जब अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि लोगों को हंसा रहा हूँ मैं, और आज अल्लाह ने इतना नवाजा कि लोग दूर से देखते थे तो हंसते थे, अब ये मेरे को जब शक्ल मेरी शक्ल ये थी उसने बना दी, तो उसका कितना शुक्रिया अदा कर सकता है आदमी, दूर से देख के हंसता है, पास आना चाहता है, पास आ जाता है तो फिर हाथ मिलाता है, हाथ मिलाता है तो बोले चलो चाय पियेंगे, यानी ये जो आदमी कभी किसी देखा नहीं मुझे सिवाय पर्दे के, तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। तो लोग मुझे बोलते थे, मैंने कहा नहीं, मैं बोला लाइन बदलनी ही नहीं, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है दुनिया में, कहा हंसा रहे लोगों को और पैसा ले रहे
2: हैं। जॉनी भाई ये बताएं कि ये जो आपका मखसूस अंदाज है ये आपने खुद ही डेवलप किया या मुतासिर है किसी से?
0: नहीं, मैं मुतासिर तो था, वो जो नूर मोहम्मद चार्ली जो पाकिस्तान चले गए थे उनसे बेहद मुतासिर था मैं, और उन्हीं की वजह से मैं ये लाइन

0: कॉमेडी मैंने पकड़ी थी, उनकी तमाम पिक्चरें मैंने देखी थी, सब पिक्चरें जो भी थी, और मुझे बेहद पसंद थे वो।
1: चार्ली साहब के अलावा और भी आपके साथ ही रहे थे, याकूब वगैरह?
0: मगर वो उस क्लास के नहीं थे कोई भी, चार्ली की अपनी जगह थी, नूर मोहम्मद नाम था उनका, नूर मोहम्मद चार्ली, तो उनका अपना एक अलग मुकाम था। गोप थे, दीक्षित थे, बहुत सारे थे लोग, गोरी थे, काफी लोग थे, लेकिन चार्ली साहब का बहुत मुकाम बहुत ऊंचा था।
2: जॉनी भाई, ये इतने साल जैसा कि आपने बताया कि शान के बाद एकदम चाची 420 आदमी, तो ये कमल हसन साहब को आपका ख्याल कैसे आया?
0: भाई वो मेरे पास आए, यही बैठे थे, मेरे पास आए, बोले जानी साहब ऐसा है कि जो मैं बना रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि जो जिस जैसी पिक्चर में आप काम करते थे वैसे रोल है, और मैं आपको जरा भी इधर उधर क्या नाम ऐसी चीज दूंगा नहीं जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको लगे कि ये वो, आपको वही मजा आएगा जो आप पहले काम करते थे, तो आप करिए नहीं तो मत करिए। फिर गुरुदास साहब ने भी फोन किया जो राइटर थे उनके, कि जानी भाई इनकार मत करना, बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर है। तो मैंने अपनी कंडीशन में सब वो कर ली थी, कंडीशन सब वो उन्होंने एग्री कर ली, तो आप ना कैसे बोल सकते हैं, तो इसलिए वो काम कर लिया। तो माशाल्लाह उसमें भी सब बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, सब टॉप के थे उसमें। बीच में मेरे को 15 साल के बाद बीच में आना का, तो मैंने कहा ये अपनी एक ट्रायल भी हो जाएगी, देखेंगे वो क्वालिटी अपने बची है कि नहीं बची है। मगर अजान नवाजा पब्लिक ने बहुत पसंद किया,
2: बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत अच्छा काम था आपका उसमें।
1: जोनू भाई, आपके दौर की कॉमेडी में और आज की कॉमेडी में आप क्या फर्क महसूस करते हैं?
0: नहीं, फर्क क्या, सवाल क्या है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। मैं भी हंसाता था, ये भी लोग हंसा रहे हैं, उनके हंसाने का, मेरे हंसाने का तरीका अलग था, इनके हंसाने का तरीका अलग है। मेरे टाइम में मैं था, इनके टाइम में ये लोग हैं, तो उसमें हंसाने वालों कोई मिस्टेक नहीं है।
2: पहले आपके जमाने में एक कॉमेडियन का एक खास किरदार होता था, एक रोल होता था, अब हर हीरो खुद वो रोल निभा रहा है।
0: ऐसी बात नहीं है, क्या है कि कॉमेडी में जब तक कि ओरिजिनलिटी नहीं हो, आपके अपने में कोई उसमें कोई ताकत ना हो इम्प्रूव करने की, तो कॉमेडी का होना बड़ा मुश्किल काम होता है हमारे टाइम के हिसाब से। और मेरे में अल्लाह ने बहुत उसको इम्प्रोवाइज करने का बहुत उम्र को दिया हुआ था, अल्लाह की मेहरबानी थी, तो मैं उसको इम्प्रोवाइज करके अपने हिसाब में बिठा देता था। लेकिन ये जो आजकल की कॉमेडी चल रही है, ये भी लोगों ने, अभी जैसे जॉनी लीवर है आजकल सबसे बड़ा कॉमेडियन, वही है, पिक्चर में भी उतनी ज़बरदस्त चल रहा है, टीवी में उतना ज़बरदस्त चल रहा है, स्टेज पे भी उतना ज़बरदस्त चल रहा है। अब मैं उसके लिए बोल सकता है कि वो ख़राब है? उसका काम तो हंसाना, वो हंसा रहा है, सब लोग मज़ा ले रहे हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं, उसका भी बहुत नाम है माशाल्लाह से, और बहुत नेक लड़का है वो भी, बहुत नेक है बच्चा, इसलिए अल्लाह ने उसको भी नवाजा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जेलेसी कोई बात नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, खेल खत्म,
2: वक्त वक्त की बात होती है। ये आपके जमाने में महमूद साहब थे, और
0: नहीं, नहीं, महमूद तो बहुत बाद में है मेरे, महमूद तो बाद में, हमारे टाइम पे तो वो थे जब गरम ओम प्रकाश थे, आकाश साहब थे, कन्हैया लाल थे, राधा किशन जी थे, सुंदर भी थे, मुकरी सब थे, बहुत सारे थे, ऐसे तो नहीं एक दूसरे। मगर यहाँ पे क्या है कि ये हीरो भी बहुत नाम के थे, 3-4 हीरो थे खाली, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर। अब ये तीनों भी बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, यानी दिलीप कुमार अपनी जगह थे, राज कपूर अपनी जगह था, देवानंद अपनी जगह थे, और तीनों में ओरिजिनलिटी थी, अभी तक चल रहे हैं। राज कपूर साहब का खैर अभी यहाँ नहीं रहे, मैंने भी हमारी बदनसीबी है, लेकिन वो भी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त थे।
2: राज कपूर साहब के साथ आपने कोई फिल्म नहीं?
0: मैंने एक पिक्चर की थी चोरी चोरी, वही एक पिक्चर थी बस,
2: उनके बैनर के अंदर।
0: अपने बैनर के अंदर कुछ नहीं किया कभी, कभी उन्होंने याद किया ही नहीं, मैं भी उधर, मैं भी इतना बिजी था कि मैं कभी उधर गया ही नहीं, और मेरे को तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा था कि जितना काम चाहिए था उतना मिल रहा था,
2: दिलीप साहब के साथ आपका रैप

0: एक कॉमेडी में एक चीज होती है टाइमिंग जॉनी भाई।
1: क्या है कि दलीप साहब का टाइमिंग बहुत तगड़ा है। दलीप साहब सामने लोग समझते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, ये भी काम करते टाइम पहचान लेते हैं वो, उसमें अल्लाह ने उनको बहुत जबरदस्त नवाजा है, वो भी इम्प्रूवमेंट बहुत करते हैं अपनी जगह अपने काम में, मगर वो सब पहले से तैयारी कर लेते हैं। मैं लास्ट राउंड में करता हूँ बस, मेरे में उनमें ये फर्क है, वो पहले से बहुत बहुत मेहनत करते हैं वो हर चीज पे, तो सामने वाले को समझते हैं वो कि भाई ये कहाँ तक जा सकेगा मेरे साथ, वो बात थी उनमें। तो हमारा आपस में एडजस्टमेंट बहुत अच्छा चलता था, इसलिए मैंने काफ़ी पिक्चरों में काम किया और हर पिक्चर में बहुत उनका तो नाम खैर होता ही था, मेरा भी नाम बहुत होता था।
0: जॉनी भाई, आजकल के जो नए हीरोज आए हैं और हीरोइंस आई हैं, या आजकल जिस तरह की फिल्में बनी हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: मैंने बताया ना आपको कि टेक्निक बहुत ऊंची हो गई है और इंग्लिश पिक्चरों का थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज्यादा असर है, लोगों में पढ़े लिखे लोग ज्यादा आ गए। हमारे टाइम में पढ़े लिखे बहुत कम थे, एक हमारे से पहले एक हीरोइन होती थी उसका नाम था वनमाला, तो अपने नाम के साथ लिखती थी वनमाला BABT ताकि दिखाने के लिए कि भाई मैं पढ़े लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ।
0: एक म्यूजिक डायरेक्टर भी होते थे मोती भी है।
1: हाँ, तो ऐसा चक्कर था उसको, और आप पढ़े लिखे हो गए हैं, सारे इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं, कपड़े जितने कम हो सके उतने कम पहनते हैं। आजकल तो आदमी ने भी शर्ट उतारना और बनियान उतारना और ये उतारना सब, गानों में भी इसमें भी सब, तो ये कपड़े उतारने का सिस्टम बहुत जबरदस्त चला हुआ है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तालियां बजती हॉल में, तो क्या करेंगे, लोग पसंद करते हैं, वो भी क्या करें।
0: पुराने जमाने के जो डायरेक्टर थे महबूब साहब और बिमल रॉय और वगैरह,
1: नहीं वो क्या था, वो पहले के जमाने में एक आदमी के हाथ में जहाज कैप्टन होता है ना, वो एक आदमी के हाथ में होता था कंट्रोल सारा। अभी कोई भी ले लो, पुराने जितने भी डायरेक्टर है सब, जितने भी नाम गिना है ना आपने सब ले लो, तो कोई भी आर्टिस्ट 4 दिन का सेट है और 4 दिन की सबकी डेट होगी, 4 आर्टिस्ट होंगे, 6 आर्टिस्ट होंगे, सबकी डेट होगी चारों दिन की। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 3 को आऊँगा वो 4 को आएगा मैं 2 को, ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 को 9:30 बजे मेकअप करके रेडी होना पड़ेगा, 9:30 की शिफ्ट होती थी ना, तो 9 बजे पहुंचना पड़ता था। कोई एक आदमी कितने ही बड़ा हो, मगर वो डायरेक्टर ने देख लिया कि ये रेडी नहीं है, वो याद रखेगा फिर इसको कि यार ये इसका दिमाग खराब हो रहा है दिखता है, तो उस हिसाब से चलते थे फिर। तो वो उसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती थी और आजकल डिसिप्लिन कुछ नहीं है, और डिसिप्लिन के साथ साथ एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था, तो वो मिलना सब मुश्किल है। वो तो पिक्चर बनाने का पूरा एटमॉस्फेयर माहौल सब चेंज हो गया है, सिवाय टेक्निक के उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर कॉस्टली बनाई जा रही हैं, तो वो चक्कर चल रहा है, लेकिन देखिए अल्लाह मालिक है, इसमें भी चेंज आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा।
0: पहले जमाने में किस चीज पे ज्यादा, पहले जमाने में स्टोरी पे ज्यादा वो दिया जाता था, जोर दिया जाता था, अब तो कोई स्टोरी होती ही नहीं है फिल्मों में।
1: क्या है कि फाइट मास्टर आके फाइट ले लेता है, डांस मास्टर आके डांस करा लेता है, म्यूजिक डायरेक्टर जो अपना सब अपना हिसाब किताब सब टोटल जिसको लेने का जिसे गवाने का उसे सब गवा लेता है। डायरेक्टर का काम क्या है, खाली आर्टिस्ट को
0: एक जगह जमा करना
1: और डायरेक्टर भी वो उनके हिसाब में है कि कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए, वो भी चक्कर है। वो उस जमाने ऐसा नहीं था, तो पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर और फिर सब आर्टिस्ट, आजकल पहले आर्टिस्ट फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब आ रहे थे बाद में, तो तरकीब सारी उल्टी चल रही है ना, तो इसका सीधा होना तो इम्पॉसिबल ही है। ये अल्लाह ही जानता है वल्ला आलम क्या हुआ, हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि वो माहौल आ सकता है, आई डोंट नो।
2: आपके दिलचस्प करियर में कोई ऐसी संजीदा बात हुई हो तो उसका कुछ जिक्र करना।
1: मेरे बता रहा हूँ आपको, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट 50 साल 60 साल पहले काफी याद रहेंगे, पिक्चर को नाम तक याद नहीं है, तो वाकई इंसिडेंट याद रहना बड़ा

0: आजकल काम इम्पॉसिबल है, ये मेरे से अक्सर पूछते हैं आजकल के लोग, 20 साल तो काम छोड़े हुए होंगे, छोड़े मतलब मेरा अगर लाइफ में प्रिंसिपल है, इस चीज को करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई पाबंदी किसी किस्म का कसम खाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मेरे डिसिप्लिन में डिसिप्लिन के लिए प्रिंसिपल होने चाहिए और प्रिंसिपल के लिए डिसीजन होने चाहिए। डिसीजन भी टाइम मिलेंगे तो फायदा मिलेगा, गलत टाइम मिलोगे डिसीजन का फायदा क्या है? तो अल्लाह के करम से मैंने हमेशा सही टाइम पे सही वक्त पे सही डिसीजन लिया है और अल्लाह ने हर डिसीजन में मेरे को कामयाब किया और वो डिसीजन की वजह से आज तक मैं बचा हुआ हूँ, सेफ हूँ, बैठा हूँ, आराम से मजा ले रहा हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे बात की। हमारे सुनने वाले यकीनन आपकी इस गुफ्तगू से महसूस हुए होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया।

अभी आप सुन रहे थे मारूफ मिजाही अदाकार जॉनी वॉकर के साथ की गई एक बातचीत की पुरानी रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू कर रही थी मरियम काजमी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1,071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशियात का सिलसिला जारी है। और लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी नगमे।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश जब प्यार किसी से होता है फिल्म का दो गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, नगमा निगार हसन जयपुरी और तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने।

लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए राजा रानी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी भलाई से मुतालिक उमंगों के साथ मुस्बत मुजाकरात की उम्मीद जाहिर की है, जैसा कि आलमी रहनुमा कल से शुरू होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए नई दिल्ली में यकजा हो रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सदर मसूद पेजोश्कियान के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। कौमी राजधानी में ब्रिक्स तजारती फोरम का आगाज हो गया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने के मौके पर बढ़ती हुई मजबूती, पायदार तरक्की और ताउन के लिए कहा है। बैन अक्वामी माली फंड ने मौजूदा माली साल की पहली सेमाही में भारतीय मीशत की शरह तरक्की 7.8% तक पहुंचने के तनाजुर में भारत को आलमी तरक्की का एक कलीदी वसीला करार दिया है। भारत ने अमरीका में 9/11 के वहशियाना हमलों के 25 साल पूरे होने के मौके पर दहशतगर्दी से लड़ने के लिए अपने पुख्ता अज्म को दोहराया है। और अमरीकी ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन एरिना सेबालिंका और दूसरे दर्जे की एलिना रिबाकिना खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल से शुरू होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए दुनिया भर के रहनुमा नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि सरबराह मीटिंग में दुनिया की खुशहाली के रहनुमा उसूल के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बामाना और तामीरी बातचीत की जाएगी। भारत मंडपम में होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग में 11 उभरती हुई बड़ी और तरक्की पजीर मईशतों वाले ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान

वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पाइन मेट या विद
1: और
0: उत्पना देश अभिका खो देश सजाओ तुक्चन हो सकता है खची का उस वजह से या कोई स्पीड वो ज्यादा यो या खुद चांद हूं से गाड़ी टूले मीच या मजख्मी का तो सो से इतना खो छह महीने सजा फोक्चिन जित आगे यार गाचुक ची बस ओदे सिचुएशन पे मिसाल के चांद हूं से गाड़ी टूल बनाओ यारा चीची का फोक्स इतना का तो या यारा फोक्स इतना ओदे साबी का यार सजाओ तांचैन जो मिसाल के तौर ओदे वजह का चिचिक डेथ का तो छाना हो सकता है पूरा कोई का छह साल या तीन महीना या तीन साल खुआ सजा हो चैन दे साहब अलग अलग सेक्शन मिसाल देखो चांद हूं से गाड़ी टूले खुरंग चा फोक या हल्के फोक ना सिंपल इंजरी छाना या यंग चीज का खोई वजह का यंग चीज ज्यादा इंजरी का तो छाना ओदे साहब का पनिशमेंट फोक चैन जो बख्शिश यंग चीज जो मन इंपोर्टेंट गाड़ी टूल खान ला सक बसंग सीट बेल ngata seat belt chi o majung ara ngari na jira nga sanga rul bat traffic ba thong mana traffic pa jik se
1: ka sa na ka police
0: ne important bo the seat belt mana objectives po gran yeri hifazat mi na yaran gadi stul khan la ho sakta hai ngata maximum jatke phok na ka to the seat belt pa tak sun dun la chacha mi nera nuksan ung chamin matez पुलिस इतना 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए बचाई हुए चक्कर है उदी सीट बेल्ट तक पता सीट बेल्ट आना सेक्शन दिया मोटर व्हीकल आई गया देना 194 बीज मैक्सिमम आती सीट बेल दे दी सीट बेल पे कहा स्नाल ला मिसाल के तौर पर रुपये 200 रुपये फाइन है पिना तकसम 2019 अमेंडमेंट या पुनः दिया अनुक 1000 से ऊपर एरान दिया अनुक फाइन है जो बख्शिश
1: बख्शिश जो ये इसमें नफेस पर बस मोल्स दी मोटर व्हीकल एक्ट ना सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट ना जो गजु गजु पनिशमेंट ये दंग दू एमेंट सोंस इस गेम नहर जो दिरन उसके ता इंसुक उन्हें जो ये इसमें ले दिरन ड्राइविंग लाइसेंस इसको ला मोल्स हर जो कल तो सुका मेड ना का तो खा जस्मी अजुगां छे चांस ने मन्ना फाइन बम फोक्चर्स इन तो कल तो हर जो का सुचिक अंडर एज हो तंग हर जो खेलाना ड्राइविंग लाइसेंस होने में उन्हें दी अंडर एज पे का गजुक सजा जो जो आता थोंग बच्चन जो आताम मंगमोस प्रोसेस पर बखान जिसे गाड़ी तान हर जो मन ड्राइविंग लाइसेंस समेत छन दे आतामा निक चंगा जुक छाता कि देना फ्री कर छाता
0: बख्शी जो इंपोर्टेंट है।

0: Dizok şu ki us jaldi bedzerene yarande bazar yana sang mi dulene chiyo ne dangma bana de sattar asi cha de ni speeding khere du jurmin yaran word speeding khoran jurmin lekin word speeding se me limit chiyo misal ke tor heavy gaadi chiz word speeding ka to bana khoi ka alag fine hot
1: kaisa
0: khoi ka alag punishment ya light motor vehicle chika agar yaris word speeding na khukri ho yaran chichi yaran aji ka zarna section 183 yaris word speeding ben gaadi sunse gaadi ka to inna ka to yaran 1000 se upar 2000 tak yaran di ka fine ho chain
1: kaisa
0: ya yaris heavy gaadi ya goods misal ngata saman ki gaadi inna ka to khoi ka 2000 से ऊपर 5000 4000 तक कोई का फाइन ओवर स्पीडिंग लिमिट पे यार नजर न आता तो गंगमा डिपेंड नेरी रोड पे का मिसाल के ऊपर 80 से ऊपर न यार हवे का सुल चाहे जमीन लेकिन गाती ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट पे गंगमा तकसम हवे का आता नजर ना नम आता हादसा छोर न गतो चीज पिंजू गाड़ी स्पीड है पिंजू ये कानून नस ना नजर न कानून ओवर स्पीडिंग पे मीची मिडुल मिसाल गाता से जल्दी से जरूरत हो जो ना मत इमरजेंसी सुन इमरजेंसी सुनगा स्पीड है छत कानून चोसे तो नहीं ना मन जरूरत ले बार गोश ना दी स्पीडिंग पो छोड़ो ना मन वायलेशन का तो बेजर ने तो चोचा को ना ना सेफ्टी मीना चोसिन यार खांगमा मिसाल इमरजेंसी सुन सोत यार ओवर स्पीडिंग जी बस हो सकता है हादसे पे जो ना यार यारी मन मकसद पे का मतलब थे बात नुकसान हो उदून गांगमा ना पब सिटीजन्स ऑफ इंडिया ngatan tafuzi mina safety mina di over speeding zari de qanun ngangma gaz qanun chi chos yod nare di qanun pokhrang a yaraz de motor vehicle act pokhrang po ngati accident po reduce be mina ngati hadisatun kam be mina di qanun po chos ju ta ki kam sa kam sazek jaq bana min do logic sa kam skole restule traffic rules po obe ka to bana ho sakta yari wajh ka ngaz yari jans pare chijik mana tan tan jiski ngatang a maximum lechi chat zarbana ngaji gna gadi sule kole chenu agar yang gadi yong kumana speed gat nila ama chaluz maluz de
1: ana
0: odu gang ma khayal ja paw shin misal donu side na agar ne ngaji gna misal ke to hawai karu 50 ya 60 dule 50 60 speed en chenu agar na 100 se upar speed en ga to na ni control en chang met उदुन गंगमा चिन गंगमा वायलेशन इन द ट्रैफिक वायलेशन इन दो चीज है जिनसे मैं येरी हुआ जगह दी कने छा खानी गाड़ी सा नुकसान है उसको हो सकता है खो इंजर्ड छ चिन खो डेथ आ छ चा जिन उदिन डेथ का तो छ न आता यार नजर न आता बीएनए से अंदर छ छ जो मतलब जगह गाड़ी टू लेना चीची डेथ सो यार इस पैसेंजर जो खुरी पिन या मिसाल यार पैसेंजर गाड़ी यार इस गाड़ी मास्टुलेशन यार ओवर स्पीडिंग या यारी गाड़ी मसना जैसे मेंटेनेंस चेज अकबर क्वेश्चन मेंटेन करते मिसाल के तौर पर खुए ngata zar na ka to gadi jo jo ngata partun zaruri zarur jo part yo ta odun ga ma maintain ka to jak na accident ni mana de ni chance kam in jo hai misal gadi ma na stu le jene na khoi chang ngata chis gang mi ma ngata geri pata met ya ngata khoi brake pata met brake mana ho sakta hai yaris gadi jag ben maintain ka to jak na yaram maximum ngara thong khan pu ngata du suksan chachin gadi brake fail son su zare ngara ko te yot panera report pen bi som ma ju zyada ta report pen bi som ma khoe careless hi waje care ma ba ya negligence hi waje ka ya ko speed hi waje ka son su zare yang yang chi chi ji report pe chin ju ki khoe ब्रेक फेल सों से जरे मैक्सिमम ब्रेक फेल चेस है जिन जो यारे जरी गाड़ी मेंटेन मार जाप पना उदिन गांव में जुर्मीन यारा आज जर ना कत ओवर स्पीडिंग पो खरंग मना आते स्टुलचा खरंग कानूनन जुर्मीन लेकिन ओवर स्पीडिंग जर बना नती रोड की कंडीशन से सभी का स्टुल बगोशेन यारे मिसाल के तौर पर गली अनुक कंडीशन इन जरे नमा स्पीड शुल जमीन जरे हवे का में शुल दो मेन लिमिट चो चिंका जगह चे ओदे लिमिट है सभी का कानून इस गचुक चीज जरे ना दे सभी का डुल बर वशिन जो
1: बख्शी जो अच्छा ना दखसम गते सजो गति करगिल कॉन्टेक्स्ट अनुस पर ता ना गतो गता पता गति मार्केट पु गजुक शे जो मस्वे ता जो गति पेडेस्ट्रियन ना मिमोस ना दने का ना डुल बर गति गाडी यंग दना फे डुल बना हजो छने दिरिया नु गति लामिका डुल खान उन ना गाडी शुल खान निसके हजो चिक चिक पे तई अजुक शी रिस्पांसिबिलिटी दु पहाजो लामिका डुल ले नत खान पुसंस ना बा गोशा दो किदी का गाडी गन शुल ले नत खोंग बेरे छि नक्ष मि छा गोदला मुश्किल इज गा मिडुल बा गोजरे छन ओदो छगा यरेस छि सम जु मतंग मिमंग सगे का हजु मन बीइंग अ ह्यूमन गतस सिविक सेंस मतस कोले गति का गचु रिस्पांसिबिलिटी रिदु इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी कि नि कना चंग गलती मि छा गोज नि वजे खला यंग छ नक्ष मि थोंग बा गोजरे दो सोसला का चंग अति दि दो
0: सोसला मन आता रेरे ने रेरे एक्सपीरियंस का तो यो न वाकन दी एक्सीडेंट कम छ छिन नति बाजार पुस्सा का पता तंग देनुक चंग पब्लिक आंदे पस जुल छिन गाड़ी आंदे पस जुल छिन नता नारेस मिसाल नता सग गाड़ी स्टूल बत नति

0: മീഡിയ മുഖ്യമന്ത്രി ചെസ് ആകാശവാണി കരികിലിക്കണ ജെറി ന്യൂസ്.
1: Jangi business un laske tang mifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli torikain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chigi ka advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग.
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता.
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242.
4: सुनो ना.
2: हाँ.
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
2: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं.
2: मुझसे.
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर.
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ.
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ. नंबर नोट करो 8700014242.
4: ओ 8700014242. लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर.
5: ایلومس بنینوہ انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

0: पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से पूरी दुनिया में बेशुमार जानें तलफ हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतासिर भारत पिछली कई दहाइयों से इसका मुकाबला करने में पेश पेश रहा है। वजीर अजम ने 9/11 के मुतासरीन को खराज अकीदत अदा करते हुए उनके कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी तीरअंदाजी पैरा सीरीज 2026 के तीसरे मरहले में सोने का तमगा जीतने के लिए पैरा तीरअंदाज शीतल देवी को मुबारकबाद दी है। वजीर आला ने मुबारकबादी के अपने पैगाम में कहा है कि वुमन्स कंपाउंड इन्फरादी इवेंट में सोने का तमगा जीतना और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में कांसे का तमगा जीतना पूरी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा।
1: लुकन हिस्ट्री के लुकन हिंदान टीवी

0: उनमें सिनेमा शायद सफे अव्वल में होगा। हमने अक्सर उजाड़ सिनेमा घरों या बंद सिनेमा घरों की तस्वीरें अखबारों, रिसालों और सोशल मीडिया पर बारहा देखी हैं। इस पस मंजर में 7 सितंबर से 10 सितंबर तक श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग में मुनअक्द हुए बैन अक्वामी फिल्मी मेले का एहतमाम और इससे पैदा जोश खरोश बहुत ही अहम संगी मील के तौर पर उभरा है। इस मेले ने हमारे मुल्क और बैरूनी मुल्क फिल्म साजों, अदाकारों, मौसीकारों, सिनेमा निगारों, नकादों, तलबा और सिनेमा के शैदा और शायकीन को इकट्ठा किया। इस बैन अक्वामी मेले का इफ्तिताही एडिशन का हुजूम भी एक अहम सूरत हाल के साथ सामने आया। ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से 1100 फिल्में वसूल हुई, जिनमें 135 फिल्में मेले में स्क्रीनिंग के लिए मुंतखब की गईं। इन फिल्मों को श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग में दिखाया गया और इनसे वाबस्ता प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिससे इस मेले को इलाकाई किरदार हासिल हुआ। जहां इस मेले की इफ्तिताह पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी शख्सियात ने शिरकत करके इस मेले की शान को दोबाला किया, वही बॉलीवुड के मशहूर जमाना फनकारों, अदाकारों, डायरेक्टरों बशमूल विदू विनोद चोपड़ा, इम्तियाज अली, पंकज त्रिपाठी, सुनिधि चौहान, फातिमा सना शेख, अवनीत कौर, किरण जुनेजा, रमेश सिप्पी और तकनीकी माहिरीन ने इस मेले में चार चांद लगाए। इन सितारों की मौजूदगी ने जम्मू कश्मीर में उभर रहे उभरे हुए टैलेंट और मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के पेशेवराना अफराद के दरमियान बराह रास्त राबता कायम किया। इस तौर से यहाँ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सिनेमा से वाबस्ता तकनीककारों को एक जबरदस्त मौका मिला। उनके राबते बढ़ने का मतलब उनकी फिल्म सन्नत के गलियारों तक रसाई हासिल करने में आसानी होगी। इस मेले की कामयाबी को फिल्मी और टीवी शख्सियात के तासुरात से भी नापा जा सकता है। फातिमा सना शेख ने इस मेले को अवाम को इकट्ठा करने, नौजवानों को बा इख्तियार बनाने और इलाकाई सिनेमा को फरोग देने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। फिल्मसाज अकबर खान ने इस मेले के इफ्तिताह को शानदार करार दिया और हौसला अफजा अल्फाज में कहा कि IFFJK के एक बड़े बैन अक्वामी सकाफती प्लेटफॉर्म में तरक्की करने की सलाहियत रखता है, जो कि बड़े बड़े फिल्मी मेलों की सफ में उनको ले जा सकता है। अदाकार पंकज त्रिपाठी ने फेस्टिवल की तारीफ करते हुए असल सिनेमा और मकामी टैलेंट को ज्यादा फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती और सकाफत और फनकाराना सलाहियत की तारीफ करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि बॉलीवुड एक बार फिर कश्मीर और यहाँ के लोगों पर मरकूज मजीद फिल्में तैयार करेगा। इस मेले से जम्मू कश्मीर को फायदा मिलेगा, खासकर इसकी इमेज और अमन अमान की अगर बात करेंगे तो इस त्यौहार से हमारी सियाहत और मेहमाननवाजी से मुतालिक शोबे को फरोग मिला है। हमारे पहाड़ों, बागात, झीलों, दस्तकारी और कुलहम सकाफत ने जमाना कदीम से दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ रागिब किया। बॉलीवुड और गुल गुलशन गुलफाम जैसे मकबूल आम टीवी सीरियल ने हमारे मुल्क के कोने कोने तक जम्मू कश्मीर को पहुंचाने में मदद की और अब OTT के जमाने में भी हमारे सियाहती असासे हमारे लिए माशी, इक्तिसादी और समाजी खुशनुदी के लिए कार आमद साबित हो सकते हैं और इस मेले की बदौलत हम इन असासों को एक बार फिर नई सूरतों में एक नए तख्लीकी अंदाज में बैन अक्वामी बिरादरी के सामने पेश कर सकते हैं और इस तरह से फिल्मी सियाहत, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, मेहमान नवाजी, दस्तकारियों, रेस्तरानों और इससे मुंसलिक दीगर शोबों बशमूल ट्रांसपोर्ट वगैरह की अजहद हौसला अफजाई हो रही है। जहां तक हमारे नौजवानों को इस शोबे से बराह रास्त रोजगार से जोड़ने की बात है तो यहां पर यह कहना जरूरी है कि आज का सिनेमा या टीवी सिर्फ अदाकारी और हिदायतकारी तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ये सिनेमाटोग्राफी, सेट डिजाइन, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, डिजिटल मार्केटिंग और कॉन्टेंट की तहरीर और तश्कील के बहुत से मौके फराहम करता है और इस मेले की वसातत से तलबा, जिनकी बड़ी तादाद ने इस मेले में शिरकत की, को फिल्म साजी के मुख्तलिफ अंदाजों और तख्लीकी अमल से वाकफियत हासिल हुई और ये खास तौर सामने उभर कर आया कि फिल्मों में करियर बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि नौजवान अपने घर बार छोड़कर मुंबई, दिल्ली वगैरह में स्ट्रगल करें, बल्कि कई ऐसे मौके भी हैं जहां घर बैठे भी काम किया जा सकता है और घर से दूर फिल्मी इदारों, प्रोडक्शन इदारों के साथ काम करते हुए वो मकामी तौर पर अपनी सलाहियतों को फरोग दे सकते हैं। गर्ज ये कि IFFJK के जरिए जम्मू कश्मीर में एक बड़े फिल्मी माहौलियाती निजाम की तश्कील के लिए एक अहम कदम उठाया गया है और उम्मीद ये है कि आगे भी सरकारी और गैर सरकारी तौर पर ऐसे ही प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा, जिससे इस माहौल को और भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और हमारे सियाहत और नौजवानों को अजहद इस्तेफादा होगा। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो

अभी अब लौट चली फिल्म से आपने कुमार सानू और सोनू निगम को सुना। नगमे निगार थे समीर और मौसीकार थे नदीम श्रवण। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं आरिजू फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। अनंत बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अन्नू मलिक ने।

अभी अमृत फिल्म में आपने मनहर और अनुराधा पौडवाल को सुना। नगमे निगार थे आनंद बख्शी और मौसिकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।

मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामिन, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति

0: किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibility

0: प्रगतिज बिकम प्रोग्रेस।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
3: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को ये बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरूआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के हों

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China.

0: Luxun diri sa diri chu duna diri culture po gasuga strungchai dyana ngembu jamhuriyat po gasuga stanpor chochin dyun sari ka gasuksi meeting chi lu salphaba se satambar il je chua press conference history ka mima sunla hagotans
1: jo ek UT level body article 371 of the constitution ke तहत jo gathit honi hai usko leke charcha hui aur jaisa ki pichli meeting ke andar जो 3 जुलाई को हुई थी उसके अंदर फैसला हुआ था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये बात हुई कि आर्टिकल 371 के अंदर यूटी लेवल बॉडी गठित की जाएगी। उसमें चर्चा का विषय आया कि इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के या इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे एलएचडीसी के माध्यम से। तो सभी का मत यह था जो लोग आए एपेक्स बॉडी के और केडीए के कि ये डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होना चाहिए और इस मुद्दे पे सहमति बनी। दूसरी चीज जो बता देना जरूरी है जिसके बारे में चर्चा हुई कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ डायलॉग चालू हुई है वो उसकी बुनियाद जो है वो समझ लेना जरूरी है कि लोगों का कहना ये यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा ये कि हमारी वी वॉन्ट प्रोटेक्शन फॉर आर लैंड for our culture, for our heritage, for our mineral resources and for our environment and jobs. Jobs का जहां तक के मुद्दा है वो पहले ही एक रिजर्वेशन की प्रक्रिया जो कि यूनिक लद्दाख के लिए पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का रिजर्वेशन की प्रणाली कहीं नहीं है वो दे दी गई है। और जहां तक के बाकी मुद्दे हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि इसका हम प्रावधान रखेंगे। तो इसके अलावा बात यह हुई कि जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है लद्दाख के अंदर उस पॉलिटिकल आर्किटेक्चर में फाउंडेशनल यूनिट जो है वो तो पंचायत है, पंचायत के ऊपर एलएचडीसी है, एलएचडीसी के ऊपर यूटी लेवल बॉडी है। तो कुछ एक सवाल जो हैं कि एलएचडीसी और यूटी लेवल बॉडी का आपस में रिश्ता क्या होगा, एलएचडीसी के क्षेत्राधिकार में पावर क्या आएंगी और यूटी लेवल बॉडी के क्षेत्राधिकार में पावर क्या आएंगी, उसके 8-10 सवालों की एक सूची जो लोग लीडर आए थे उनके साथ साझा करी गई। और जाहिर सी बात है कि उनके पास उन सवालों के फौरन तरीके से जवाब नहीं थे, तो उनसे ये आग्रह किया गया कि आप इसके ऊपर चिंतन करें, आपस में विचार विमर्श करें, लोगों से विचार विमर्श करें और उसके बाद जो है हमको बता दें कि आपका इसमें क्या है, ताकि अगली बैठक जो कि अक्टूबर में होनी है उसमें इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए एक हम ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ सकें। अब ये समझना जरूरी है इस सारी चीज में कि हम एक संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि कोई ऑर्डिनरी लॉ की इनेक्टमेंट। तो ये भी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता रहती है। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल कंसेंसस अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे उनका भी इसमें एक सहमति होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हिस्सा होता है और उसके बाद इसके डिटेल्ड रेगुलेशन बनेंगे, यानी कि कानून जो है वो अलग बनेगा। कुछ चीजों जो बड़ी चीजें हैं उसका प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया जाता है और बाकी के लिए कानून बनाया जाएगा। तो ये एक 2-स्टेप सॉर्ट ऑफ प्रोसेस है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको भी मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, ऐसा तो है नहीं कि हम हमारी मंशा कि आज हमने कागज लिखा और कल पार्लियामेंट ने पास कर दिया। वो तो वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट के उनका एक प्रोसेस है लेट डाउन, उसमें कभी कभी सेलेक्ट कमेटी में भी बिल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, तो उसको चीज को वक्त लगता है। तो ये सब चीजें

आपके साथ ट्रांसपेरेंटली साझा करी गई। ठीक है, यहाँ जो लीडर्स वहाँ आए थे उनकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हमको कागज ही मिल जाए सीधे, लेकिन कागज बनाने से पहले सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर सहमति होनी जरूरी। लीगल ड्राफ्टिंग ऑफ द बिल विल फॉलो आफ्टर वी हैव अग्रीड ऑन द प्रिंसिपल्स। सो दैट इज व्हाई वी हैव शेयर्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस कि ये सवाल हैं, आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या मत है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है थोपना नहीं चाहती कोई ऐसा मॉडल जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल ना हो, तो सबको विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ने की इसमें बात है। तो मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट में जिसमें कहा गया कि भाई हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे को ड्राफ्ट मिल जाएगा, ये होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस एक अच्छी वर्च्यू है मैं समझता हूँ, और उसमें पेशेंट अगर आदमी रहे तो अच्छी चीज निकल के आती है मंथन के बाद। नहीं तो हड़बड़ाहट में हमको ऐसी चीज कर दें तो बाद में हम कहें कि नहीं ये तो सही नहीं हुआ, तो उसको फिर बदलना मुश्किल होता है। दूसरी चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है, एलजी साहब ने टेकअप किया था गृह मंत्रालय से कि जो स्टेट सर्विस का जो फीडर काडर है उसके अंदर 15 महकमे इन्वॉल्व हैं और तकरीबन 79 पोस्ट हैं जो कि ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट हैं, वो इन्वॉल्व हैं, तो उसकी रिक्रूटमेंट यहाँ की रिजर्वेशन नियम के चलते हमको अलाउ कर देनी चाहिए। तो उसका भी इनेबलिंग नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने कर दिया है और अब जो है ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल सारे के सारे एलजी साहब के पास भेजे जाएंगे 15 डिपार्टमेंट्स के, और उसके बाद यूपीएससी के पास वो जाएगा, जिसके बाद हम उसके रिक्रूटमेंट चालू कर देंगे। उदाहरण के तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर या अंडर सेक्रेटरी, डेप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, फंक्शनल मैनेजर इंडस्ट्री, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, बीडीओ, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, इस तरह के जो पोस्ट हैं इसमें अब लद्दाख के जो यंग लोग हैं उनको रिक्रूटमेंट का मौका मिलना चालू हो जाएगा। तीसरी चीज जो जिसके बारे में बात हुई जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे गृह मंत्रालय ने सहमति दे दी है कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस का गठन किया जाएगा और उसकी मोडेलिटीज जो हैं वो अब वर्कआउट होंगी, तो उसकी प्रक्रिया अब जल्द ही हम चालू कर देंगे। बाकी जो पिछले साल 24 सितंबर को घटना घटी उसके लिए वो तो ऑलरेडी यहाँ के जो लीडर्स गए थे उन्होंने आपसे शेयर किया है, केसेस कौन से विड्रॉ करने हैं वो हम एलजी साहब को भेजेंगे, कॉम्पनसेशन का भी जो बात उठी थी तो उसके बारे में भी हम एलजी साहब को इसका मसौदा भेजेंगे और एलजी साहब जल्द ही इस पे अपना फैसला देंगे। हाल में कुछ हमने एक ड्राफ्ट रूल एलजी साहब के अप्रूवल से निकाले थे नवतोड़ को लेके, और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे उसको लेके कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई है या करी जा रही है मुझे नहीं मालूम। तो ड्राफ्ट रूल जो है उसका निकालने का साझा करने का पर्पज ही ये होता है कि आपको एक ड्राफ्ट हमने दिखाया, ये सब जानते हैं सर्वविदित है कि नवतोड़ एक ऐसा इशू है जिसमें हजारों लोग जिसमें अफेक्टेड हैं, हजारों लोगों की जमीन मोनेटाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नवतोड़ में है। पहले आपको याद होगा कि नवतोड़ जिनके पास जमीन थी उनके विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं मिल रहे थे, वो हमने अवरोध हटाया। अब नवतोड़ को जो कि एक लीज होल्ड टेनेंसी राइट्स थे उसको अब हम ओनरशिप राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसका एक प्रोसेस बताया है कि किस प्रकार से, और ये पावर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि एलएचडीसी की पावर है, रूल मेकिंग पावर कानून के तहत सरकार की होती है, लेकिन जो एक्चुअल रेगुलर

ऑर्गेनाइजेशन है इन रूल के तहत वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही करेगी, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। उसमें जो चुनी हुई LHDC, क्योंकि जमीन का अख्तियार LHDC का है, तो वही लोग करेंगे। पहली क्लैरिफिकेशन तो मैं ये देना चाहता हूं। दूसरी बात, जो एक सुझाव या लोगों को इसके दौरान कई लोगों ने आकर के चर्चा करी कि मोनेस्ट्री की जमीन जो है उसके अंदर भी उनको बहुत पैसा भरना पड़ेगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां तक के रिलीजियस कल्चरल और मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की लैंड है उसका हम फ्रेमवर्क, उनका रेगुलराइज, जो उनको टाइटल देने का जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट मोनेस्ट्री की लैंड को टाइटल दे देंगे। इसके अलावा भी सुझाव यह है कि जो छोटे लैंड होल्डर हैं जिनकी जमीन कम है उनको ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाए, तो इसमें विचार हम ये कर रहे हैं कि एक एकड़ तक तो हम जो है कोई पैसे ना लें अगर किसी की एक एकड़ तक जमीन है, और उसके बाद एक ग्रेडेड फार्मूला बनाएंगे कि एक मान लीजिए 1 से 10 एकड़ है तो इतने पैसे लगेंगे, 10 से 20 इतने लगेंगे, ताकि जो छोटे लैंड होल्डर हैं उनको पैसों के लिए बहुत ज्यादा भार ना पड़े उन पे, तो वो भी हम करेंगे उसका भी। अब क्योंकि फाइनल रूल अभी नोटिफाई होंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को इसमें और सुझाव अगर देने हैं तो वो देने के लिए फ्री है, अभी भी कोई ऐसा नहीं है, उसकी अभी तारीख बच रही है। तो जो भी वैलिड सजेशन होंगे, अदरवाइज सरकार की मंशा होती तो डायरेक्ट रूल ही नोटिफाई कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है और कंसल्टेशन का एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। समझना जरूरी यह है कि पीछे एक हमने लैंड यूज चेंज करने के भी LG साहब ने अप्रूवल दी है, सहमति। तो लैंड यूज और नवतोड़ को हम अगर एक साथ में देखेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा गेम चेंजिंग एक फैसला है। नवतोड़ की जमीन, आपकी खुद की जमीन, ओनरशिप राइट आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये ओनरशिप राइट मिलने के बाद, मान लीजिए वो खेती की जमीन थी, उसको आप उस पे बनाना चाहते हैं, कोई रिजॉर्ट बनाना चाहता है या हो सकता है कोई दुकान डालना चाहता है, तो उसका लैंड यूज बदलने का एक फ्रेमवर्क पहले नहीं था, वो फ्रेमवर्क भी अब नोटिफाई हो गया है। तो इसका मतलब है कि जमीन जो कि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है यहां पे, उसको मोनेटाइज करने का एक फ्रेमवर्क हमने बनाया है। और मैं समझता हूं वो लैंड यूज चेंज ना होने की वजह से हजारों लोग ऐसे थे लोन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर दुकान डाल नहीं सकते, तो वो हमने इनेबल करने के लिए सारी चीजें करी है। तो इसके अलावा जो है आखिरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं यह है कि रिक्रूटमेंट्स तो आपको मालूम ही है सबको कि बहुत तेजी उसमें पकड़ी हुई है, और इस वर्ष जो है 2026 में कुल मिला के 1340 कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरीज में, ग्रुप बी गेजेटेड में 24, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड में 418 और ग्रुप सी में 874 जो है उनकी रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट करी गई, और 633 पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज करी गई हैं और 874 पोस्टें और एडवर्टाइज होने वाली हैं, तो 1504 कुल मिला के पोस्टें एडवर्टाइजमेंट साइकिल में, जिसमें 331 कांस्टेबल की पोस्टें हैं, 40 जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस के उनकी पोस्टें हैं, और 716 वैकेंसीज जो कि लोगों को प्रमोशनें कई वर्षों से नहीं मिल रही थी, वो हमने 716 लोगों की प्रमोशनें भी कर दी हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट है उसको लेके 125 डॉक्टर्स की भर्ती होनी है, और LG साहब ने चेयरमैन UPSC को खत लिखा, और UPSC की टीम दो बोर्ड जो हैं वो ले आ रहे हैं ताकि लोगों को कष्ट न उठाना पड़े, और UPSC के बोर्ड जो हैं वो यहां पे गठित होके 21 से 25 सितंबर के बीच में डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद भर्तियां होंगी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक केंद्र सरकार

0: है, यूपी प्रशासन है, हमारा पूरा प्रयास ये है कि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके अनुकूल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं उसकी डीपनिंग के लिए जो भी बन पाएगा वो हम करेंगे।
1: ड्यू इनमिन चीफ सेक्रेटरी लद्दाख आशीष कुंद्रा मोलिन्योत्पिन लद्दाख ला आर्टिकल 371 नालजोंस गसुगे ड्राफ्ट प्लान चिल्दनचिन दीस कोरियानुक अक्टूबर इल्जेनुक यांग दीस

मलेंग ख्योमी मिंगना प्रोजेक्ट विजय मेमोरियल पेकना सपिला पास सकपा मोटरसाइकिल रैली चिगी ग्रलसिर बसे युतपिन दी रैली अनुक मेंगा गपचुना चिगीज खक लेस्पिन गाउन ला प्रोजेक्ट विजय मेमोरियल पेकना रिटायर्ड कर्नल ओबे राविस थरस परे फुते तांसखान इन मिनगा वक्सला ब्रिगेडर सिरत प्रकाश डिप्टी जीओसी एट माउंटेन डिवीजन ब्रिगेडर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजय ब्रिगेडर आशीष जोशी कमांडर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड दोना शमखमी प्रोजेक्ट विजय न सिविल खखुरुन लस्मियुन दोना ऑफिसर उन सगस खख लेस्पिन दक्षन सखपा यंतिस गनिनचोतपिन दिहत्या सोमी फेसबुक खबरुन यों मी शुक्र जगात सनी बजरगुना फेतिका यं यंतना थुक थुक दे मन पुंग अचांगा इजाजत शेष दे बोझ यजू खुदा नर सामानी फकरें।

मीडियम इकांगचेस आकाशवाणी करगिली का नाजरीन दयांबोंगाची दिरिंग फ्रचुपत पी प्रोग्राम ने वक्सपु थमाथन अस्के यांग यांतांबु थुक थुक दे मनपोंगा चांगा इजाजत चेस दिवस येजू अल्लाह हाफिज जय हिंद।